La Loma de Guarey. Assalamu alaikum, main aapki behan Batagram se, meri mere chehre par gair zaruri baal bahut zyada hain, kuch bata de please. Bhai, baalon ke liye kuch aisa nahi hai hamare product mein. बट जो लोग आपसे ये कह रहे हैं कि ये क्रीम इस्तेमाल करें, ये चेहरे से आपका जो है ना बाल खत्म हो जाएंगे भाई, तो ये आपको झूठ बोलते हैं. आज अभी तक ऐसा प्रोडक्ट नहीं आया जो बालों के लिए, जो चेहरे के बालों के लिए होते हैं. बट ये लोग जो आपको कह रहे हैं भाई, ये बिल्कुल झूठ कह रहे हैं. जमाखोर इदा से कार दे कसस्तास्तु में मचे जमुंगा क्रीम इस्तेमाल के इदा बदल वेखतो उस ततडेर खल के हुई जमुंगा ब्लीच वेखतम लर कई लेकिन दा दुम्र दरोख दा ब्लीच दा देर पारी चे दा वेखत पट की न दा दुम्र दरोख कस इजरत कस्मी हो एमचे दा दरोख वही मुकम्मल चुरलट दा दरोख वही चे सोक दरता वही जमुंग ब्लीच वेखतो

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात, इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा।
3: گرانو ریدن کو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آوری۔

0: तो फिर आइए स्काईहॉक इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में, जहां तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं बल्कि किरदार साजी, अखलाकी तरबियत, एतिमाद और क़ियादत की तामीर भी हमारी अव्वलीन तरजीह है। नर्सरी से लेकर FSC तक मियारी इंग्लिश मीडियम तालीम, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स के बेहतरीन प्रोग्राम, काबिल और तजरीबाकार असातिज़ा इकराम, जदीद तदरीसी तरीक़ेकार, कंप्यूटर और साइंस की जदीद लेबोरेटरियां, पुरसकून और महफूज तालीमी माहौल, तलबा व तालिबात के लिए मियारी व महफूज ट्रांसपोर्ट की सहूलत, तालिबात के लिए कॉलेज सेक्शन में अलीहदा क्लासेस का इंतजाम। यहाँ निसाबी तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों, जहनी व जिस्मानी नशोनुमा और अमली तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी है। अपने बच्चों के बेहतर तालीम व तरबियत के लिए कल नहीं आज ही तशरीफ लाइए स्काईहॉक इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम, जहां ख्वाबों को मिलती है कामयाबी की परवाज।
1: ग्रानो औरिदुन को तसो आवाज और रेडियो अमन 88.4 बटग्राम
2: अमन दरुह संदरदा।

आई वेलकम बैक जनाब करा करा वगैरह से इंपॉर्टेंट कॉल चिकम दे हम राशि नगा पकी बिल्कुल डी ज्यादा जरूरी भी और 900 ददी देव जना आदा ब्रेक तरफ तक तलु नो भाई देव हम वापस रागलु नो चाचा चे उसमंगा ज्वाइन करियो आटो न तयो जलीबिया पर प्रोग्राम के वेलकम खुशामदीद जी आई नो प खैर आले चिकम दे आगा वायु प्रोग्राम देश स्पोर्ट्स कॉर्नर माधव लिखी के सस्ते मेजबान ताज रहमान अमन रेडियो FM 88.4 प्लेटफार्म नदा प्रोग्राम तासुता उड़ान दिखेगी आज दा प्रोग्राम सिर्फ तासु अवरे दिले नशी बल्कि दा पा फेसबुक बंदे तासुदा महल कतलेले चि दे आगा हम शे अमुंग कचरे तासु कतलेले गोवाड़े तासु बा फेसबुक ओपन कवे सर्च बार तब जेल तब टाइप कवे रेडियो अमन न्यूज नेटवर्क

अगर कोई बंदे इस तरह है जो कहें कि फेस भाई मैं आपको सुन रहा हूँ, मार देखो बहुत फेयर इशू चल रहा है, मैं भी चाहता हूँ इस प्रोग्राम में शुरू करें, तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो। क्या करेंगे आप लोग, जाएंगे अपने मोबाइल के की पेड पे, जिसके पास बड़ा फोन होगा, जिसके पास छोटा फोन होगा, वो डायल डायल करेगा 03-371-1888 में, जो हमारा दूसरा ऑफिशियल जो हमारा दूसरा नंबर है 09-37-34-400। आप लोग हमें इन दो नंबरों पे कॉल कर सकते हो। If someone is want to join us, so you can join 09-931-3104-00. अगर कोई बंदे इस तरह है जो मुझे ये कहे कि मैं सासू माँ के घर गया हूँ, किसी और के घर गया हूँ, मैं कॉल करूंगा तो मसला बन जाएगा, तो आप लोग जाए मोबाइल के एडमिस ऑप्शन पे, जहाँ से हम लोग आप लोग बहुत सारे मैसेज करते हैं वहाँ पे, लिख ले REV, फिर इसके बाद तो स्पेस डालें, फिर अपना नाम और अपने इलाके का, फिर इसमें इस पैगाम टाइप करके हमें रवाना कीजिएगा 85-83 पे।

पिछले शो में हमने स्पीकर के साथ बात की थी कि हम सुबह जल्दी उठेंगे तो शाम को हमें पहले सोना होगा. हम पहले सोएंगे तो हम सुबह जल्दी उठेंगे. इसके कौन कौन से फवायद है दिल के साथ हमने डिस्कस किया था, लेकिन अब उसकी तरफ हम थोड़ा सा जाने. चलो आज का जो हमारा टॉपिक उसकी तरफ हम जाएंगे.

0: नेक्स्ट मैच ऑफ द शो वाज सलाम फेज सालार, कैसे हो? मैं आज बहुत उदास हूँ और अब भी बोल रहे हो इन्हा सुवांती, हम आपका बहुत ही ज्यादा शुक्र गुजार है। पता नहीं आज मेनू की होंदा है, मां बंद चल छे दिन पूरे के मसला बंद छे दिन सम सम समझ के ना रहे
1: दरो को सम दम को बस से प्रोग्राम तक की उस बानी गुरे हां ना उस बनी में जस पास हम लाड़ सो
0: ना
1: जे अब सेकंड ना पाते करें तो सम को से

a la cámara del celular de ser, tengo que... Bueno, la verdad es que no me da songa, chenga ni legda, chao, que por ti next message aya hai, aur message ki taraf hum jate hain, isne bade gaur se kaha ke bhool jaye hame. इसने बड़े गौर से कहा कि भूल जाऊं हमें, हमने बड़े, हम बड़े नवाब थे, मुस्कुरा कर कहा कौन होता.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: लम्हा जरा गौर से सुनिए। कामयाबी का मियार सिर्फ दावा नहीं बल्कि नतीजा हो तो फिर नाम याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम। मुख्तसर अरसे में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी, शानदार नताइज। हालिया मैट्रिक बोर्ड इम्तिहानात में जिला भर में पहली पोजीशन के साथ साथ 117 तलबा में 112 तलबा की A1 ग्रेड में कामयाबी। ठहरिए, सिर्फ यही नहीं बल्कि इदारे के पहले बैच के 2 तलबा का यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिशावर में मेरिट पर दाखला। यही है मियारी तालीम की पहचान। राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में नर्सरी ता FA, FSC, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की बेहतरीन तालीम। जदीद साइंस व कंप्यूटर लैब, जदीद लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत इत्मीनान और जिम्मेदारी के साथ। छठी जमात से 12वीं जमात तक बच्चियों के लिए अलहदा सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन के लिए तजर्बाकार फीमेल स्टाफ। वी आर राइजर्स। महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी हैं। पता याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, नजबैंक ऑफ खैबर बटग्राम। फोन नंबर 0356535207।
1: खुशखबरी खुशखबरी द बटाग्राम खल्क द पारा द आजादे पो मौका यवलवी खुशहाली। न्यू सदा बहार बेकरी एंड सुल्तान जनरल स्टोर तासुला जबरदस्त ऑफर रावड़ी दी। कस्तासु बर्थडे केक न पकार भी या आजादे द पारा डबल रोटे पकार भी का ताजा बिस्कुट कस्तासु ताजा केक न पकार भी या पिस्तियाने और दी सरा सरा बतासु द मटयाने हम मिलावी। न्यू सदा बहार बेकरी एंड सुल्तान जनरल स्टोर और दाला सके द कॉस्मेटिक और द शुमानु हर किस्म सामान हम मौजूद था और खुशबूदार सर्फ सरा सरा यख जूस और कोल्ड ड्रिंक हम दे पर टोलो पर आडिक्स बांधी स्पेशल डिस्काउंट खुचर तले न दे गया। इंतजार देचा नन राशे न्यू सदा बहार बेकरी था। नन राशे न्यू सदा बहार बेकरी एंड सुल्तान जनरल स्टोर था। दखपल दखवाखी एटम जानना तरला सके पता याद चाहते न्यू सदा बहार बेकरी एंड सुल्तान जनरल स्टोर निज वेगनाडा मेन बाजार बटाग्राम। राबेती द पारा प्रोप्राइटर अब्दुल वकील एंड सुल्तान जेब सरा पदीश मेरा राबेता कवेशी 0349-5982-022 और बिल नंबर दे 0311-5388-379। सदा बहार बिक्री दखवंदुन।
2: खुरा खुरा गुल अफजला लास मुनिसा
3: नरो रा बस देर अज्ञात में खुड़ा देर त्रस्कुन पखले उरंदार कड़े हो
2: उरंदार हो त्रस्कुन पखले कड़े हो खो
3: खुस्त
2: खुदा चिदा उरंदार दा खप पखली सर कमाल दा मायारी मसालो हुम दे
3: नु दा मसाले खुमों खुम इस्तेमालो खुदा से त्रस्कुन खुराक माचर तबजवन की न दे कड़े
2: मसाले ना मायारी मसाले
3: मुंग तो हम दा मायारी मसाले रहो खाए कना मुसलमान दा खुदे वल पमंग दिदा से त्रस्कुन खुराक पिरजो न दे सो
2: دو معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوے گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوے گی دو تحصیل بٹاگرام پا بانیا

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।